0: मैं झूठ नहीं बोलती, लेकिन आप इतने गुस्से में थे कि मुझे ये बात आपको बताते हुए डर लग रहा था।
1: और अब डर नहीं लग रहा, पहले लग रहा था। गुस्सा तो मुझे अभी भी आ सकता है,
0: डर तो अब भी लग रहा, लेकिन मैं झूठ बोल के सो नहीं सकती। मैं जानती हूँ ये मामूली सी बात है, लेकिन झूठ तो झूठ होता है ना।
2: मैं ड्रामा की पाकिस्तान के टीवी इंडस्ट्री लिबुन टर्निंग पॉइंट के गोतुक की न भाई को सिफा करी। पाकिस्तान के ड्रामा इंडस्ट्री अलुं आरास्त कुरुमुगा बोड दावरें मी सिलसिला ड्रामा अदा कुरिकमा अधिवेस की न भाई को कबूल करे। पाकिस्तान अधि मेदुर मचा इंडिया अधि नेपाल बांग्लादेश वद एता गाँव में के रही तुम मे ड्रामा बलाफवे।
0: मेरे अब्बू कहा करते थे, झूठ बोलना सिर्फ पहली बार आसान होता है, उसके बाद मुश्किल ही मुश्किल होती है, और सच बोलना पहली बार मुश्किल, उसके बाद आसानी ही आसानी होती है।
2: हम सफर में ड्रामा एफ माहिरा की न ड्रामा सीरीज तक कुड़े फावे एक तेरे का

गाड़ी मिहार में वनी फस कड़ी तेरह मिनट हिंगा फकोरी अम्मे दाश रोगा गुड़ा ले फमी वनी हातिम अस्सलाम वालेकुम हातिम हातिम कौन कमे का थोड़े नी ड्यूटी का ता ए आदि साफ है नोए फुट पोड़े हुकुर दो से माफ दो अस्तो बारा फाड काड़ो अन्ने ने कौन थानो के तियोले ने गेगा गेगा तियोले ने को बस आगे कंका निम्मारे हुकुर दो स्वीमा बेर दियो में ने आदि नेक काम है मेरे एक हम नुकु में लाने दो कौन लावे गाड़ो हाला नन्नोटी कोल दी दाई दाई दो हाँ सकोल लानी एनी मुनी वारा उफा वे जेंगे हाथिम गुड़ा दे मफ दो गेस गुड़म्मा ना थी वैसेंगे वाके लान में

0: ईशा सुवाने कुरंत
1: कोब्बला
0: दिवे ही बहुगा सुकुं कुरे वेया कुरता की कोबा
2: अलिफु सीनु नूनु ता शवियन
0: रंगाळु फेमवेरुं एमे मैक को बुनानी की हिने
2: नाने फुलफिल लेबो
0: वारर रंगाळु वेहेता फेन्नेगु मे बुनम की कोबा
2: लिबे फुरसत के बेनुं हिफु माडु कोब्बला की कुरं कुरा सुवाले तमे
0: मि तैयार वणी दिवे हेफे मुं गेनस्ते शवियनी प्रोग्राम
2: शवियनी प्रोग्राम ए दिवे हे बहुगा सुवाल अन्ना कोंगेरे को अन्ननी
0: कोम्मे हुकुरु आदि होनी हिरु दोहेगेरे अग्गडी तिरी हुगा
3: शविया

0: अस्सलाम वालेकुम नोदिहे के मेगाहर्ट्स अदिवे ही एफएम ट्यून कोगेंति बे हुरिहा ए हुनते नवरंग उफावेरी बाचवेरी वगुत कोळकन एदेन बालालनसळि मिसेस दागे मि हफ्तागे शोया की गवस्मि बद्दल कोली अलगुन फहीदा बालालनसळि फिल्मी एकेके मसकेतोगे वाहक दक्कालमा कुरियेगेंदा मि शोगा दिवे ही अदि बेरुगे सिनेमा तका फिल्मी एकेके प्लेटफॉर्म तकुन फेन्ना बालालनसळि कामुदा हिग्याम रीत फिल्म तका टीवी सीरीज तका आदि डॉक्यूमेंट्री तोगे मौदुमात एहुंते न गेनिस्तुनम वरम मसेके कुराना शोगे बैतका एकिग कुरियदुमगे कुरिन मि हफ्तागा वेस एमए फुरतम इवालानी गेस्ट डायलॉग मशहूर फिल्म तोगे नो ता टीवी सिलसिला तोगे तेरेन हुवालाफवा खास डायलॉगे इवाला मि बैगा कोमे शोगे वेस मि गेनेस्ते गेस्ट डायलॉगे तेरेन जुमलाकुन एमहेग एमए गिने जवाब ते रंगळ कुरा बावेरिंगे तेरेन गुरुवतुन होवे फरातका कोमे महकुस हदियां एबे दुकोला गेस्ट डायलॉग के जवाब तक फोनवानी पीएसएम एआ में दोर को मिहाय साबुं मिहफ्ता के डायलॉग की वाला न।
1: गेस्ट डायलॉग
2: आई लव यू
3: वेयर
2: व्हाट
3: शो मी Where is this love? I can't see it. I can't touch it. I can't feel it. I can hear it. I can hear some words, but I can't do anything with your easy words. Whatever you say, it's too late.
2: Please, don't do this.
3: It's done. No, please go.
4: Me kon film ek hi mene dialogue. मिसोल के जवाब फणवाणी पीएसएम में आमे दोरिको बालालन सळि शोया जवाब फणोम के सुंगडिया की अंगार दोग मेंदम पार गड सु मिनट कम में हफ्ता को स्कुरिय गेंदा बालालन सळि मिशोग गेनेस्ते केस्ते डायलॉग के एम में गिने सवाल तो के जवाब रंगळ कुरा बावेरेका महा को एफआर नगा गुरतुम खास हदिया एली बेने एम में गिने सवाल के जवाब रंगळ कुरा बावेरे नगाणी कम में महे गेवेस एम में फहुशोगा
1: केस्ते डायलॉग
0: ಇವಾಲ್ದಿನಿ ಮಿ ಹಫ್ತಾಗೆ ಬಲಾಲನ್ ಸಳಿ ಶೋಗೆ ಗೆಸ್ಟ್ ಡೈಲಾಗ್ ಶೋಗೆ ಕುರಿಯಂ ಹುರಿ ಬ್ಯಾತ ಕದ್ದಿಯಂಗೆ ಕುರಿಂ ಫುರತಮ ದಿವೆಹಿ ಅಮಿಲ ರಾವ್ ಗೆಲಾವೆ ತೆಂಗ್ ಇವಾಲ್ದೇನಾ

चिंता को तलवार की नोक पे रखे वो राजपूत, रेत की नाव लेकर समंदर से शर्त लगाए वो राजपूत, और जिसका सर कटे फिर भी धड़ दुश्मन से लड़ता रहे वो राजपूत।

0: राजपूती कंगन में उतनी ही ताकत है जितनी राजपूती तलवार में।
1: मिफिम बिनाय फवने मालिक मोहम्मद जायसी के लिमिकमावा पद्मावत के मच्चा रीतिकमा शरफा बारा दहिवितकम के वाहकवर फुला दायरा गकिया दे मिफिल्म का दीपिका पटकोन कुलेफवनी रीतिकमा शाहिकमा मशहूर राजपूत के रानी पद्मावती के रोल शाहिद कपूर कुलेफवनी रसकेफान महारावल रतन सिंह के रोल फिल्म के विलन के कुत का फेनिगंदनी दिल्ली सुल्तान सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी मिरोल कुलेफवनी रणवीर सिंह फिल्म का फेनिगंदा वरुगद सपोर्टिंग रोल तक कुलेफवनी अदिति राव हैदरी जिम सार्ब राजा मुराद अदे अनुप्रिया गोयंका फदा तजरिबाकार फन्नानू।